0: FM. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari scam.my/crc2026.
1: Mujhe kuch kehna hai.
2: मुझे भी कुछ कहना है
1: मुझे कुछ कहना है
2: मुझे भी कुछ कहना है
1: पहले तुम
2: पहले तुम
1: पहले तुम
2: पहले तुम
1: पहले तुम
2: तुम
1: तुम
2: तुम
1: तुम
2: तुम
1: तुम
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करके निकल गई थी उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए
1: अच्छा मैं कहती हूँ